मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे प्रियांशी के साथ, और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल्लगी। श्रोताओं, ऐसा हम सबके साथ कभी न कभी होता है कि मन में बहुत सी बातें हों पर उन्हें कहने के लिए कोई विशेष अवसर ना हो, और ऐसे में कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ठहर कर हमारी बात सुन ले, बीच में अपनी बात ना रखे, कोई उत्तर खोजने की जल्दी ना करे, बस हमारी बात को उसके पूरे विराम तक पहुंचने दे। किसी का इस तरह चुपचाप हमारे पास बने रहना भी तो अपनेपन की कितनी सुंदर सी भाषा है। तो शायद इसीलिए कुछ बातें कह देने के बाद मन हल्का हो जाता है, क्योंकि सामने वाला उन्हें केवल सुनता नहीं, अपने पास थोड़ी जगह भी देता है। तो यदि आज आपके पास किसी की कोई अधूरी सी बात आ जाए तो उसे थोड़ी देर ठहरने दीजिएगा। हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता, कुछ बातें केवल सुने जाने से ही हल्की हो जाती हैं। बस आज की छोटी सी बात में आपसे इतना ही कहना था। तो सुबह की इस संगीत यात्रा में आज कई रंग हमारे साथ चले, उत्सवों की उमंग, परंपरा की लय और जीवन को थोड़ा अधिक सहज बनाने वाली एक छोटी सी बात। इन्हीं सुरों और बातों की मिठास के साथ अब म्यूजिकल दिल्लगी से मुझे दीजिए अनुमति। कामना है आज का दिन आपके लिए सहज, सुखद।

और मुस्कुराहटों से भरा रहे। जो काम हाथ में लें उसमें मन लगे और दिन के बीच कहीं कोई छोटी सी खुशी चुपचाप आपके हिस्से भी आ जाए। सुबह 10:30 पर फिर मिलूंगी आपसे कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में, जहां आपके संदेश और मनपसंद धुनें हमारी संगीत यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। और 11:10 पर तस्वीर में मेरे साथ चलिएगा तानसेन की नगरी की यात्रा पर, गलियां जहां संगीत, कला, प्रेम और संघर्ष से इतिहास भी सुशोभित है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली एफ एम गोल्ड 100.1 MHz पर। संगीत आपके दिन में यूं ही अपनी थोड़ी सी जगह बनाए रखे। प्रियांशी भटनागर का आप सभी को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हुतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनर्प्रयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की

सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर बहुत गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Assembly. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh has requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, a new front in the wider war that began with US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Google has been fined €403 million by Ireland's Data Protection Commission for breaking strict EU privacy rules regarding how it tracks people. Regulators found that between 2018 and 20, Google unlawfully tracked and processed users' location information through three main features: its web and app activity settings, its location history mapping tool, and location accuracy feature built into the Android operating system. Indian equity markets opened marginally higher today, tracking positive global cues and a correction in crude oil prices. At 9:20 a.m., Sensex was up 64 points at 74,914, while Nifty gained 34 points to 23,449. And in women's cricket, India will face Sri Lanka in the gold medal clash at Asian Games in Nissan, Japan today. The match will begin at 10:30 a.m. Indian time. India sealed their spot in the final with a dominant 114-run victory over Bangladesh. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने यूरोपीय संघ के कड़े गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करने के लिए गूगल पर 40 करोड़ 30 लाख यूरो का जुर्माना लगाया। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
2: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित 3 दिन की बैठक में पारित किया गया। बैठक में घरों के लिए LPG जैसे विकल्पों का समर्थन किया गया, जिससे विकासशील देशों को खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ने में मदद मिले। उन्होंने ऊर्जा की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी सरकारी अनुमति प्रक्रियाओं को तेज और आधुनिक, कार्यकुशल बनाने का भी आह्वान किया। इसके अलावा प्रतिभागी देशों ने कृषि, विनिर्माण और सामुदायिक क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता के आधार पर स्वैच्छिक जल पुनर्चक्रण पहल शुरू की। अंत में सदस्य देशों ने साझा डेटा, नवाचार और संयुक्त निवेश के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने के लिए स्वेच्छा से मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है

0: की आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान मिल सकें। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उपयोग इलाज संबंधी निर्णय लेने में सहायता, स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने और बीमारी के संभावित क्षेत्रों की पहचान में किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में और देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी।
3: इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा, जो हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। ब्रिटेन ने इससे पहले भी सऊदी अरब को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाव के लिए स्काई सेबर वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि ये सहायता सीमित अवधि के लिए होगी और स्थिति की समीक्षा की जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका निभाने के साथ हॉर्मुज जलडमरू को खुला रखने के प्रयासों में भी सहयोग कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि कल से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की सभी एयरलाइंस का अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभावित हो सकता है। ईरानी विमानन कंपनियों को ईंधन, हवाई अड्डे की सुविधाएं या टिकट सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियां भी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। ये कार्रवाई ईरान के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंच सीमित करने के अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा है। इस बीच न्यूयॉर्क में चल रहे 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ईरान को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने यूरोपीय संघ के कड़े गोपनीयता नियमों के उल्लंघन के लिए गूगल पर 40 करोड़ 30 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2018 से 2020 के बीच

गूगल ने उपयोगकर्ताओं की स्थान संबंधी जानकारी गैर कानूनी तरीके से दर्ज और इस्तेमाल की। ये काम वेब और ऐप गतिविधि लोकेशन हिस्ट्री और एंड्रॉयड की लोकेशन एक्यूरेसी फीचर के जरिए किया गया। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते। सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आप सभी के मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा उन सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित करने का। आपके मन में कोई बात हो, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प हो या कोई खास संदेश, उन्हें भी अपने प्रिय गीतों के साथ हमें अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर और भेज दीजिए हमें fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः ईमेल स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना गीत और नाम और शहर भेज सकते हैं 9868 687 5 3 पर, यानी 9868 687 5 3। तो क्या पता श्रोताओं, कहीं अगली सुरमई धुन आपकी ही पसंद से चल पड़े।

संगीत की इस दिलकश लहर के बाद आइए श्रोताओं, खोलते हैं आज का दिल का मेलबॉक्स और पढ़ें आपके आत्मीय संदेश। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा हमें संदेश भेज रहे हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत, नाजमा, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक, अली मुजफ्फर अली हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ खान और परवीन हैं इनके साथ। उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार हमें सुन रहे हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। मजनू कटीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु सागर और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग, आकांक्षा और माही हमें सुन रहे हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर, ममता, कीर्ति और भूमिका हमारे साथ हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये रोमांचक गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं तुरंत संगीत की इसी प्यारी, रोमांचक और आगे आने वाली डिस्को रवानी के साथ।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे।
9: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
11: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
10: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
12: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
13: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
12: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
13: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
12: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
13: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में, और मेरे साथ हैं आप सभी के मनपसंद गीत और हार्दिक संदेश। तो श्रोताओं, अभी नहीं भेजे हैं तो जल्दी से लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर, और भेज दीजिए मुझे fmgoldair@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868686875 पर। तो आइए श्रोताओं, अविलंब फिर टटोले आपके भेजे संदेश और उनमें से खोजें आपके मनपसंद गीत। संदेश हमें और प्राप्त हुए हैं मेरठ से डॉक्टर पारुल सिंह और डॉक्टर विवेक के, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हमारे साथ हैं, कालका से हमारे साथ जुड़े हैं शिवचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा, भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष हमारे साथ हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, डबवाली से हमारे साथ हैं राजेंद्र नारंग, अंजू जी, मोहित और तानिया, दीपू, विकी, पुनाराम, यश, आराध्या और पूरा धूमधर परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है नई दिल्ली के रघुवीर नगर से, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के गुन्नौर से, बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, शबाना और अरहान हमारे साथ जुड़े हैं बल्लीमारण से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवयम हमारे साथ हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

प्रिय श्रोताओं, अब समय है आपके संदेशों का, तो देखें किसने कहां से लिखा है। शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल जी, योगेश कुमार, दीपक और कुमारी पूजा ने हमें लिखा है। गुरमीत सिंह मीता लिख रहे हैं साउथ एक्सटेंशन से। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक हमारे साथ हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा जी हमारे साथ हैं। ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत और बेबी गरिमा हमारे साथ हैं। ये लिख रहे हैं फाजिलका से। मुखर्जी नगर नई दिल्ली से अवनीश कुमार हमारे साथ हैं। सुनील पाठक, कमल, दीपिका और गाव्या हमारे साथ जुड़े हैं। अनारकली बाजार जगराव से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से तुलसी मस्कीन, वीना जी, आशीष राजा, चैतन्य मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, किशोर धान हमारे साथ हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल हमारे साथ हैं। और अलीगढ़ से रेशमा, सलीम और हमारे साथ जुड़े हैं। ये अलीगढ़ से अगला संदेश हमारे पास आया है बबलेश पवार, डैनी, मनीष का। रामदेवरा से दिनेश चौहान जुड़े हैं हमारे साथ और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक और रोमांचक गीत इनकी फरमाइश पर।

कुछ आखिरी संदेश और ले लेते हैं श्रोताओं आपके, और उसके बाद कार्यक्रम को विराम देना होगा। सज्जन कुमार जांगरा, कार्तिक और वेदांश जांगरा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं हिसार से, थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से। विठल करमदिया और शोभा जी इनके साथ हैं। धर्मवीर जी दिल्ली के पिंगावाला चौक जालंधर से सुन रहे हैं। ज्योति मक्कर, संदीप मक्कर मनत इनके साथ हैं। विवेक सिंह, पारुल सिंह, तरुण, वरुण, दिशा और शिवानी सुन रहे हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल जी इनके साथ हैं। अंबेडकर कॉलोनी मोहाली से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र जी, माधुरी, आराध्या, मोनिका, राघव, माधव, सार्थक, अनंत और कायरा। मकलापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुनेकर हमारे साथ हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला जी, विशाल जी इनके साथ हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर एक गीत, जिससे आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। पर उससे पहले आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं इस कार्यक्रम की रूह है। अपना प्रेम और प्रोत्साहन हमें भेजते रहिएगा, हमें अनंत प्रसन्नता होती है। आपके हर संदेश में स्नेह, विश्वास और अपनेपन की अलग ही छवि झलकती है। इसी आत्मीयता के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। समय की सीमा के कारण आज कुछ संदेश शेष रह गए, लेकिन वो हमारे मेलबॉक्स में सुरक्षित हैं और आने वाले कार्यक्रमों में उन्हें भी आपके बीच लाने का प्रयास रहेगा। सुनते रहिए श्रोताओं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 MHz पर। प्रियांशी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अब से कुछ देर में नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
1: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ AI फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि AI मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल पहली V4+ भारत विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक V4 की मौजूदा स्लोवाक अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करम पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और भाईचारे की भावना से जुड़ा है। एशियाई खेलों के ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के नागोया में आज दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है।

जहां चट्टानों पर समय की रेखाएं उभरती हों, जहां किसी प्राचीन जलकुंड में आज भी एक नगर की जन्म कथा की स्मृति ठहरी हो, और जहां पहाड़ी की ऊंचाई पर इतिहास सदियों से अपना स्वरूप बदलता रहा हो, वहां ग्वालियर है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके प्रिय कार्यक्रम तस्वीर में आज मैं प्रियांशी भटनागर आपको ले चल रही हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ओर, ऋषि गालव की तपोभूमि, गोपाचल की उस प्राचीन भूमि की ओर। इस शैल भूमि के प्राचीन नाम गोपाचल, गोपगिरी और गोपाद्री ग्वालियर की पुरातन स्मृति को आज भी सजोए हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको ग्वालियर के नामकरण से जुड़ी एक संक्षिप्त कथा सुनाती हूँ। लोक परंपरा में कछवाहा वंश के राजा सूरज सेन की इस प्रदेश में भेंट होती है संत ग्वालिप से। इन्हें ऋषि गालव से भी मान्य है। कथानुसार संत ने राजा को इस पहाड़ी के पवित्र जल से आरोग्य प्रदान किया। वही जलकुंड आज ग्वालियर दुर्ग के भीतर सूरज कुंड के नाम से विद्यमान है। संत ग्वालिप की स्मृति से जुड़ी यही कथा ग्वालियर के नाम की लोक व्युत्पत्ति का आधार बनती है। कथा के पीछे इतिहास की अपनी साक्षी भी है। इस भूभाग से छठी शताब्दी तक के अभिलेख मिले हैं, और फिर इसी शैल शिखर पर उठता गया वो दुर्ग जिसकी प्राचीरों में ग्वालियर का दीर्घ इतिहास आज भी दिखता है। तो आइए एक गीत से आरंभ करें और फिर उसी दुर्ग की ओर चलकर इस भव्य नगर के दर्शन पर चलेंगे।

गोपाचल की जिस शिला भूमि पर ग्वालियर की कथा ने आकार लिया, उसी पर खड़ा है ग्वालियर दुर्ग। शताब्दियों से नगर के ऊपर अपनी अडिग उपस्थिति बनाए हुए है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन की इस ऊंची पहाड़ी पर फैला ये दुर्ग दूर से जितना विराट दिखाई देता है, भीतर उतरते ही इतिहास की परतें उतनी ही गहरी होती जाती हैं। दुर्ग की ओर बढ़ते हुए शैल पट्टों पर उत्कीर्ण जैन तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमाएं सबसे पहले यही दृष्टि ठहराएंगी। ये गोपाचल की प्रसिद्ध शैलकृतियां हैं। पहाड़ को ही साधना और शिल्प का आधार बना देने वाली अद्भुत परंपरा। और आगे है मान मंदिर महल, राजा मानसिंह तोमर की स्थापत्य दृष्टि का अद्भुत उदाहरण। बलुआ पत्थर पर जड़े नीले, हरे और पीले ग्लेज्ड सेरेमिक टाइल्स में हाथी, बाघ, मोर और मगर की आकृतियां हैं। फारसी शिल्प परंपरा से प्रभावित इस अलंकरण ने महल को चित्र मंदिर यानी चित मंदिर नाम दिया। भीतर के भूमिगत कक्ष और जल प्रणालियां इस स्थापत्य कुशलता का एक और परिचय देती हैं। और यहीं से जुड़ी है मानसिंह तोमर और गुजरी रानी मृगनैनी की प्रेम कथा। लोक कथा के अनुसार रानी मृगनैनी ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, अपने महल तक राई नदी का निरंतर जल। राजा ने उनकी इच्छा पूरी की और दुर्ग की तलहटी में गुजरी महल बनवाया। आज यहाँ पुरातत्व संग्रहालय है। दुर्ग की स्थापत्य यात्रा में तेली का मंदिर उत्तर और दक्षिण भारतीय स्थापत्य परंपराओं का संगम दिखाता है, तो वहीं सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे आज प्रचलित रूप से सासबहु मंदिर कहा जाता है, अपनी सूक्ष्म नक्काशी से चकित कर देता है। इसी परिसर में है गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ साहिब, गुरु हरगोबिंद जी की स्मृति से जुड़ा। एक ही दुर्ग में धर्म, शिल्प, राजसत्ता और स्मृति की इतनी परतें मिलती हैं कि इतिहास यहाँ अनेक युगों तक संवेद स्वर बन जाता है। तो आइए अब इन्हीं स्वरों को संगीत में भी सुनें।

0: दुर्ग की प्राचीरों से उतरकर ग्वालियर शहर भी चलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। कहीं जाइएगा नहीं श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।

स्थापत्य की एक पूरी परंपरा से परिचित करा जाती है। मितावली से आगे भूदृश्य फिर खुलने लगता है और राह ले जाती है हमें नेशनल चंबल सैंक्चुरी। और ग्वालियर की यात्रा से लौटते हुए शहर की कुछ स्मृतियां अपने साथ जरूर ले जाइएगा। महाराज बाड़ा, सराफा बाजार और पटंकर बाजार की ओर निकलें तो यहां से गजक, नमकीन, हस्तशिल्प, धातु कला, लेदर की वस्तुएं और मध्य प्रदेश की चंदेरी महेश्वरी साड़ियां तथा दुपट्टे मिलते हैं। निश्चित मूल्य पर खरीदारी करनी हो तो सराफा बाजार में स्थित है मृगनैनी एम्पोरियम भी देखा जा सकता है। ग्वालियर घूमने के लिए आप आए तो अक्टूबर से मार्च का समय सुविधाजनक है। दिसंबर में आए तो तानसेन समारोह यात्रा का संगीत भी एक विशेष रंग जोड़ देगा। दिल्ली से रेल द्वारा लगभग 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल से हवाई संपर्क भी उपलब्ध है। और यदि यात्रा में वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग यात्री साथ हों तो ग्वालियर की सुगम्य भारत से जुड़ी पहल भी उल्लेखनीय है। एक्सेसिबल ग्वालियर के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों में रैंप्स, हैंड रेल्स और एक्सेसिबल टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

ग्वालियर जंक्शन पर कम ढलान वाले रैंप्स हैं, सुगम प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग्स हैं और निम्न ऊंचाई वाले टिकट काउंटर्स और सहायता की व्यवस्था भी है। शहर से लौटते हुए शायद यही साथ रह जाए किसी दुर्ग की शिला, किसी महल की छाया, तानसेन की समाधि पर ठहरा कोई स्वर या बाजार से लाई गजक की मिठास। इतिहास यहाँ केवल देखने की वस्तु नहीं, वो नगर के वर्तमान में भी जीवंत है।

और अब ग्वालियर की इस यात्रा से विदा लेने का समय है। पीछे मुड़कर देखें तो एक ही नगर की कितनी छवियां आज हमारे साथ साथ चली। गोपाचल की शिला पर उत्कीर्ण इतिहास, दुर्ग की प्राचीरों में संजोया वैभव, जयविलास के कक्ष, तानसेन की समाधि पर ठहरा कोई राग और स्वर्ण रेखा के किनारे अमर हुई रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति। एक नगर की पहचान उसके स्मारकों के अतिरिक्त उसकी कथाओं, संगीत, गलियों और उन स्मृतियों से बनती है जो वहां से लौटने के बाद भी मन में बनी रहे। इसी भाव के साथ तस्वीर में ग्वालियर की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। फिर किसी नए नगर, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डिलीबरेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa William.

0: 만든
1: नमस्कार साथियों, दोपहर की इस घड़ी में जब सूरज ठीक सिर के ऊपर लगता है और हवा का रुख बदलने लगता है, तब यही वो समय होता है जब हम एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, बातें करते हैं और दिन को थोड़ा हल्का बनाते हैं। आप सुन रहे हैं घर आंगन, मैं हूँ श्रुति पुरी और ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है FM गोल्ड की 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल से ये कार्यक्रम मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो हमें यूट्यूब चैनल AIR न्यूज लाइव 24/7 पर भी सुन सकते हैं। और अब एक छोटा सा रोचक सा प्रश्न आपके लिए। हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी एक छोटी सी आदत या नुस्खा जरूर होता है जो दादी नानी या माँ से हमें विरासत में मिलता है। हो सकता है वो चाय बनाने का कोई खास तरीका हो, या फिर मौसम बदलने पर कोई घरेलू नुस्खा, या फिर कोई ऐसी बात जो घर के बड़े अक्सर दोहराया करते हैं। आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी एक आदत या नुस्खा है जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अपना जवाब हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com और आपके भेजे किससे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का दिन जिस महान व्यक्तित्व की जयंती का है वही आज के सुविचार की प्रेरणा भी है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव वलंगईमान में जन्मे भारत के महान समाज सुधारक और कूटनीतिज्ञ V.S. श्रीनिवास शास्त्री की आज जयंती है। शास्त्री जी सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक बेहतरीन वक्ता और मध्यस्थ भी थे। विदेशों में बसे भारतीयों की सेवा के लिए भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे थे सच में एक प्रेरक व्यक्तित्व। V.S. श्रीनिवास शास्त्री जी का एक सुविचार आज के लिए। शास्त्री जी कहा करते थे कि हमारा काम सिर्फ अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम की चिंता मत करना, यह हमारा काम नहीं है। यानी मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए और नतीजा अपने आप संवर जाएगा।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे गीता मेरा नाम फिल्म में। तो दोस्तों अब चलते हैं देश के उत्तर पूर्व की ओर मणिपुर में। मणिपुर में एक अनोखा उत्सव आज के दिन मनाया जाता है जिसे हेइक्रो हिडोंगबा कहते हैं। ये मणिपुर का प्रसिद्ध नाव उत्सव है। ये मणिपुर कैलेंडर के लागबन माह के 11वें दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत महाराजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुई थी। इम्फाल के जो विजय गोविंदा मंदिर के पास बनी खाई है उसमें दो लंबी नावों के बीच ये दौड़ होती है और इससे पहले भगवान विष्णु और विजय गोविंदा की पूजा अर्चना भी की जाती है। दौड़ के दिन 108 आंवलों की माला और 108 चावलों के दाने जो होते हैं उसकी एक और माला भगवान को अर्पित की जाती है। सदियों बाद ये परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज ही डोल 11 मनाई जा रही है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है जिसे परवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं इसीलिए इसे परवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भगवान कृष्ण की मूर्ति को सुंदर डोल यानी झूले में सजाकर पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जहां नदियां हैं वहां नौका विहार कराया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा माहौल अब भक्तिमय हो जाता है और इसी भक्ति को समर्पित है ये गीत।

खाली खगोलीय घटना नहीं है बल्कि एक सीख भी है। जैसे दिन और रात का संतुलन जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी काम और आराम का संतुलन भी बना रहना चाहिए। हमारे पुरखे भी मौसम के इस बदलाव को बहुत बारीकी से देखते थे और अपने खान पान और दिनचर्या को उसी हिसाब से ढालते थे। तो चलिए आज सूरज की इस सीख को अपने जीवन में भी उतारते हैं और अपने दिन में भी काम और आराम का हिसाब उतना ही बराबर रखने की कोशिश करते हैं जितना आज प्रकृति ने खुद बना दिया है।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब सूरज खुद ही दिन और रात को आधा आधा बांट देता है। जी हाँ, आज के दिन शरद विषुव यानी ऑटम इक्विनॉक्स है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं और ये आज या कल के दिन के बीच में ही होता है। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। साल में ये सिर्फ दो बार होता है, जब सूर्य की किरणें धरती के भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और दुनिया के हर कोने में दिन और रात की लंबाई लगभग समान हो जाती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे रातें लंबी होने लगती हैं, सर्दियों की आहट शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक

और श्रोताओं, अब वो बात जो मेरा पसंदीदा सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, वो ये कि जब मैं आप लोगों की मेल पढ़ती हूँ, आप लोगों के किस्से सुनती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, रोचक बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आता होगा। तो आज की इस मेल जो हमारे पास आई हैं उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सा नुस्खा या ऐसी कौन सी बात है जो दादी नानी के ज़माने से अब तक चली आ रही है, घर के बड़े अभी तक उस बात को बार बार दोहराते हैं और आप और आपके आने वाली पीढ़ी में भी वो विरासत के तौर पर पहुँच रही है। तो वो प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हमें भेजा है नवीन भाटिया जी ने मोती नगर दिल्ली से। ये लिखते हैं, घर आते ही सीधा पानी ना पीने की बजाय कुछ बिस्किट वगैरह खाकर ही पानी पीना चाहिए और यही वो आदत है जो हमारे घर में बरसों से चली आ रही है और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी आदत है और ये हमारे जैसे कई घरों में ये आदत आज भी अपनाई जाती है। और पंकज बिंदल जी का ये बेल हमें आया है, लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल जी चौधरीवास से, पंकज बिंदल जी, केशव, प्रयाग, प्रयांशी और विवेक। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, हमारे घर में पूर्वजों के समय से ही घर पे आने जाने वाले का बहुत आदर किया जाता था। मेहमानों को हम भगवान की तरह मानते हैं। आप भी कभी आइए, हमारे आकाशवाणी के सभी परिवार को ये सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार राजू अग्रवाल जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी जो भारतीयों की ये परंपरा भी है कि हम जब घर में कोई अतिथि आता है तो उसको देव समान मानते हैं, नारायण मानते हैं, भगवान मानते हैं। और एक मेल हमें आया है अफरोज शेख जी का, ये सोपुला बिहार से लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि सत्तू को पानी में घोलकर हमारे घर में पिलाया जाता था और चुकंदर का छिलका पानी में उबालकर जो उसका पानी छाना जाता था उसमें नींबू निचोड़ कर अगर हम पीते थे तो हमारे घर में सभी कहते थे कि चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया आपने अफरोज जी, ये तो हम सभी के काम का नुस्खा है और सत्तू को तो सुपर फूड भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं और घर में बुजुर्ग इस तरह की चीज़ों की आदत अक्सर ही डाल दिया करते थे। एक और मेल हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बड़ों की शिक्षा है कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आपका मेल आया है सुदर्शन मुखी जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ घरों में ये बात आज भी कही जाती है कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्राणवायु को अपने अंदर ले पाते हैं। तो एक मेल और आया है हमारे पास, ये मेल हमें लिखा है गौरी शंकर जी ने नांगलोई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि राम राम, हमारे जो दादी दादा और नानी नाना का जो कहना था वो ये था कि जो तजुर्बा वो हमें सारी जो हम ग्रहण करते हैं, दादा दादी और नाना नानी का जो अनुभव हम लेते हैं वो हमें सारी ज़िंदगी काम आता है। कई बार मैं काम में परेशान हो जाता था तो मेरी दादी कहा करती थी कि ये एक ज़िंदगी का तजुर्बा है जो तुम्हें अपने जिसमें तुम्हें पास होना है, फेल नहीं होना है। और वो इतनी हिम्मत बढ़ाती थी, काम में सफलता मिलती थी और आज भी जब भी मुझे कभी भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे उनकी ये सारी बातें याद आती हैं। ये तो एक बहुत ही प्रेरक बात है गौरी शंकर जी, क्योंकि घर में जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमेशा बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और आज भी हमारे बड़े हमारे

साथ हमें प्रेरणा ही देते हैं। जब भी हम उदास होते हैं, जब भी हम किसी काम से थक जाते हैं, तो उनकी प्रेरणा हमें अक्सर याद आती है। और अब समय है आपको एक प्यारा सा गीत सुनाने का।

अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह घर से निकलिए तो हॉर्न की आवाजें, लंबा जाम और धुएं से भरी हवा। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या जयपुर, हर शहर की सुबह अब कुछ ऐसी ही होती चली है। और शायद इसीलिए आज का दिन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हर छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ी निकालना वाकई जरूरी है। आज विश्व कार मुक्त दिवस है, जिसका मकसद बस इतना सा है कि साल में कम से कम एक दिन हम अपनी गाड़ी को आराम दें और पैदल चलें, साइकिल उठाएं या मेट्रो या बस से सफ़र करें। हमारे यहाँ तो ये बात और भी मायने रखती है। शहरों में बढ़ते वाहन सबसे बड़ी वजह हैं उस प्रदूषण की, जिससे हम हर सर्दी में जूझते हैं। और मज़े की बात ये है कि हमारे शहरों में आज भी ज़्यादातर सफ़र छोटी दूरी के होते हैं। सब्जी लेने जाना हो, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना हो या पास के बाजार तक जाना हो, ये सब तो पैदल भी हो सकता है। बस इतना है कि आदत छूट गई है। और सच कहूँ तो जब सड़कों से गाड़ियों का शोर कम होता है तो वही सड़कें अपना स्वरूप बदल लेती हैं। बच्चों को खेलने की जगह मिल जाती है, पड़ोसी रास्ते में रुककर एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं। हम में से कितने ही लोग होंगे जिनको अपने बचपन के वो मोहल्ले याद होंगे जहां गलियां गाड़ियों से नहीं बल्कि हंसी के ठहाकों से भरी होती थी। तो क्यों ना आज एक छोटी सी कोशिश करें, एक काम ऐसा चुनिए जो बिना गाड़ी के आप कर सकें। हो सकता है कि उस थोड़े से पैदल रास्ते में आपको अपना वही पुराना मोहल्ला फिर से मिल जाए।

दोस्तों, शायर कमर जलालवी का एक मशहूर शेर है कि तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो, तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो, फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। बरसों पुराने इस एक शेर में शायद पूरे गुलाब की कहानी छुपी है। हम सब गुलाब को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस गुलाब की कहानी उससे भी कहीं गहरी है। गुलाब जितना कोमल दिखता है उतना ही मजबूत भी होता है। सोचिए, एक नाजुक सी पंखुड़ी कांटों के बीच खिलती है और फिर भी अपनी खुशबू और अपना रंग नहीं छोड़ती। ये अपने आप में हिम्मत की मिसाल है। जीवन में भी तो यही होता है। मुश्किलों के कांटों के बीच ही तो इंसान का असली रंग निखरता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ता, वही तो असली गुलाब है। और गुलाब तो कई तरीके की दवाइयों और सुगंध में भी काम आता है। गुलाब के इतने उपयोग हैं कि उनको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। यही वजह है कि आज गुलाब सिर्फ प्रेमियों के बीच नहीं बल्कि योद्धाओं के बीच भी उतना ही सुंदर लगता है। ये प्यार की भाषा बोलता है और हौसलों की भी, और शायद यही कारण है कि गुलाब हर मौसम हर मौके पर अपनी जगह बना ही लेता है।

बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म में अभी आप अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज को सुन रहे थे। श्रोताओं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हाथ में कोई रैपर या पन्नी हो और आसपास कोई डस्टबिन ना दिखे तो बस वहीं जमीन पे डाल दिया? सच कहूं तो ये आदत इतनी आम हो चुकी है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने घर में कागज का टुकड़ा भी फर्श पर नहीं गिरने देते, लेकिन बाहर निकलते ही वो सतर्कता कहीं गुम हो जाती है। जिसका एक छोटा सा हल है, बस एक इतना सा हल है कि बस उस पन्नी या रैपर को जेब में या बैग में रख लीजिए और अगला डस्टबिन मिलने तक उसमें डाल दीजिए। ना कोई मेहनत, ना कोई खर्चा, बस सिर्फ एक आदत जो थोड़ी सी सजगता मांगती है। और सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ इतना ही कर ले तो हमारे पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन कैसे बदल जाएंगे? सफाई एक कर्मचारी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो हर उस हाथ की जिम्मेदारी है जो कचरा पकड़े हुए है। तो अगली बार जब हाथ में कुछ फेंकने लायक हो तो एक पल रुकिए, डस्टबिन तक का छोटा सा सफर पूरा कीजिए और देश की सेवा में जुट जाइए।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी बहारों के सपने। तो दोस्तों, आज की ये 50 मिनट की सोहबत भी अब अपने आप में एक पूरा सफ़र बन चुकी है। कुछ बातें दिल को छू गईं, कुछ ने सोचने पर मजबूर कर दिया और कुछ ने बस यूं ही होठों पर मुस्कुराहट ला दी। सच कहूं तो ये बातचीत की यही तो खूबसूरती थी कि हम हमेशा अपने बातचीत के पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, कोई ख्याल, कोई एहसास जो शायद फिर याद आ जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो समझिए कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइएगा और हाँ, अगली बार फिर मुलाकात होगी तो श्रुतिपुरी को दीजिए घर आंगन से अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य

0: उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 3rd National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of States and Union Territories in New Delhi today. The 2-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission

मिनट हुए हैं और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे, इनका आज जिक्र होगा कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। एक प्रतिभाशाली शानदार अभिनेत्री जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मन जीता। अपने किरदारों में वो जान डाल दिया करती थीं, इतनी सक्षम अदाकारा रहीं दुर्गा खोटे। अपनी शुरुआती फिल्मों में वो नायिका के रूप में पर्दे पर दिखीं, लेकिन जल्दी ही वो चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई। उनके बेमिसाल अभिनय को आज भी दर्शक सराहते हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया और सैकड़ों नाटकों में भी उन्होंने अभिनय किया। फिल्मों को लेकर जो सामाजिक वर्जनाएं थीं, उन्हें दूर करने में दुर्गा खोटे ने अहम भूमिका निभाई। इन्हीं की फिल्मों से गीत, इन्हीं के फिल्मी करियर की बातें जारी रहेंगी। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहाँ पर हम तय कर रहे हैं और बातें हो रही हैं जानी मानी अभिनेत्री दुर्गा खोटे की। एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ 14 जनवरी 1905 को। शिक्षित मराठी परिवार से इनका संबंध रहा। फिल्मी दुनिया से पहले इनका नाम रहा वीटा लाड। परिवार अच्छे खुले विचारों वाला रहा। सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और ये वो दौर रहा जब लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। महज 18 साल की उम्र में ही इनकी भी शादी हो गई विश्वनाथ खोटे के साथ और दो बेटे हुए इनके, बकुल और हरिन। दुर्गा खोटे सिर्फ 26 साल की ही थी कि इनके पति का निधन हो गया और बच्चों की परवरिश और तालीम के लिए इन्होंने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया और इस तरह फिल्मी दुनिया की तरफ इनके कदम बढ़े।

जानी मानी एक्ट्रेस दुर्गा खोटे का जिक्र हो रहा है इस वक्त। शुरुआत में इन्होंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। जब बच्चों की अपने बच्चों की परवरिश और तालीम की बात हुई, उनका जिम्मा इन्हें अकेले उठाना पड़ा, तो इन्होंने शुरू में ट्यूशन देना शुरू किया और जैसे तैसे घर का गुजारा होने लगा। पर इसी बीच इन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। पढ़ी लिखी तो थी ही, अच्छी पढ़ी लिखी थी दुर्गा खोटे, और अंग्रेजी भी फर्राटेदार बोलती थी। बस इसी वजह से मिली इन्हें इनकी फिल्म। दरअसल बात हुई ये कि दुर्गा खोटी की बहन ने उन्हें एक फिल्म के ऑफर के बारे में बताया, और ये जो फिल्म थी इसका प्रस्ताव पहले उनकी बहन को ही मिला था। ये प्रस्ताव उनकी बहन के लिए ही था, पर वो चाहती थी कि ये रोल दुर्गा खोटे करें, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश थी, उनका जो इंग्लिश एक्सेंट था, वो भी इस फिल्म में काम आया। उनकी अंग्रेजी सुन फिल्म मेकर्स काफी प्रभावित हुए और इस तरह फिल्मों में दुर्गा खोटे की शुरुआत हो गई। हालांकि समाज की तानाकशी का उन्हें सामना करना पड़ा, पर वो डटी रही अपने काम करने के इस फैसले पर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6

0: 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय हो रहा है और बातें हो रही हैं दिग्गज महान अभिनेत्री दुर्गा खोटे की। शुरुआती दौर में दुर्गा खोटे ने फरेबी जाल, माया मछिंद्रा जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद वो ऐसी पहली अभिनेत्री रहीं जिन्होंने पहली मराठी बोलती फिल्म में भी काम किया था। वो प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म अयोध्या चार राजा में हीरोइन के तौर पर दिखाई दी। ये भारत की पहली हिन्दी और मराठी भाषा में बनी हुई फिल्म रही। इसके बाद बैक टू बैक वो कई फिल्मों में काम करती दिखाई दी। हिन्दी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम में उन्होंने जोधा बाई का करेक्टर प्ले किया। उनका ये किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार साहब के होते हुए फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया और अपना फन और अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी इस बेजोड़ अदाकारी की कोई मिसाल नहीं। टक्कर के कलाकारों के बीच उनकी डायलॉग डिलीवरी देखते ही बनती है। इसी फिल्म से एक गीत पहुंच रहा है आप तक।

राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म बॉबी भी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें दुर्गा खोटे ने ऋषि कपूर की दादी की भूमिका निभाई थी। इसी तरह दुर्गा खोटे अभिनीत फिल्म विदाई भी दिल की गहराइयों में उतर जाती है। उनका अभिनय छा जाता है दिमाग पर। गजब की अदाकारा रही दुर्गा खोटे। दुर्गा खोटे चौथी भारतीय महिला रही जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ने अगर देखी होगी तो सचमुच जैसे बोलते हैं ना उनके करियर की, उनके सिने करियर की बहुत ही मर्मस्पर्शी फिल्म रही। फिल्म विदाई फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए वर्ष 1974 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उनके नाम रहा।

हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया। जैसे हमने बात की कि 1983 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1958 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया, 1968 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया और फिल्म विदाई के लिए ये फिल्म

में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज 2026 सितंबर महीने की दिनांक 22 और दिवस है मंगलवार। श्रोतों, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत परमन और श्री हेमंता स्वर्गीय, मनपा में उद्घोषक श्री धुप्तन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशिवंग। कार्यक्रम सुनने आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

वेब के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मिड डे न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
5: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
6: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
5: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

0: की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
3: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
4: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
3: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे

0: घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
1: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। आईएमडी ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज टी20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 पर है और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आइए सुनते हैं लामा लोफसंग सरिंग और साथियों से बोध भक्ति भजन।

Ich ho tabi apni suna. Lama Lop Sang Tsering aur saathiyon se bodh bhakti bhajan. Inhi bodh bhakti bhajanon ke saath hi bhakti geeton ka dainik karyakram vandana bhi par samapt hua. Aapki seva mein yah Akashvani ka tavang kendra hai. Shroton samay dopahar ke 3 baje hain. Lijiye shroton prastut hai vibhinn pranton ke geeton ka karyakram pradeshik sangeet. इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं मायूक हजारिका के आवाज में चंद असमय आधुनिक फिल्मी नगमे. तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत.

0: श्रोताव्य पाने ले रहे थे मायूक हजारिका की आवाज में चंद असमय आधुनिक फिल्मी नगमे। श्रोता इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत आइए सुनते हैं दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के बीए 5th सेमेस्टर के छात्र मिस संगपा लामू से रोल ऑफ वुमेन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर दिए गए चंद संदेश।
1: आकाशवाणी तवांग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं संगपा लामू दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वीं सत्र की छात्र हूँ। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात में समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर चंद शब्द बोलना चाहूँगी। महिला एक शब्द पर अर्थ अनेक व घर की शांति हो या समाज का बदलाव दोनों का केंद्र है। समुदाय विकास का मतलब है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और जब महिलाएं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाती है क्योंकि महिला वही शक्ति है जो परिवार को संभालती है और समुदाय को जोड़कर रखने का काम करती है। आज की महिला घर की सीमाओं तक सीमित नहीं व शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक विकास सफाई अभियान परिवार पोषण जैसे हर क्षेत्र में अपना कदम जमा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG ने मजबूत आर्थिक क्रांति लाई है। इन समूह महिलाओं को अपनी कमाई बढ़ाने का अपने व्यवसाय शुरू करने का और अपने परिवार को सशक्त बनाने का साहस दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान असाधारण है जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा दीदियां और नर्सों ने गांव-गांव जाकर मां बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह सिर्फ सेवा नहीं करते बल्कि जागरूकता भी फैलाती है बच्चों की पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल तक। शिक्षा के विस्तार में भी महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार और समुदाय को शिक्षित करती है। आज अनेक महिला शिक्षिकायन और समाज सेवी लड़कियों को स्कूल जाने सपने देखने और आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। पंचायती राज में महिलाओं की 33% से भी अधिक भागीदारी ने गांव की निर्णय प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है। आज गांव की सरपंच बहने

0: ये पानी, सड़क, सफाई और शिक्षा से जुड़े निर्णय बड़े आत्मविश्वास से ले रही है। श्रोता, महिलाओं के बिना समुदाय विकास की कल्पना अधूरी है। उनका दृष्टिकोण अलग है, उनका तहरिया अलग है और उनकी संवेदना अलग है। ये तीनों मिलकर समुदाय को मजबूती, समानता और एकता देते हैं। अंत में जहाँ पर महिला विकसित है, समुदाय विकसित है और जहाँ समुदाय विकसित है वहाँ देश समृद्ध होता है। धन्यवाद।
1: श्रोता, भी आपने सुना दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के बीए फिफ्थ सेमेस्टर की छात्र मिस थांगपा लामू से रोल ऑफ वुमेन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर दिए गए चंद शब्द। श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा पेश है फिल्म बिल्लू से। सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर और मोनाली की आवाजों में गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्योतों कार्यक्रम का अगला नगमा सुनने से पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: सर 50,000 एडवांस।
2: पर इतना कैश तो हम नहीं लाए।
3: और आज बैंक भी बंद है।
4: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल।
3: लेकिन
4: अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि
5: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
6: और को भी सिखाओ।
0: श्रोताओं कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत के गीतकार है SH बिहारी तथा संगीतकार है OP नायर।

0: शोधों कविता सेठ के गाये फम वाकफ सेठ के सिनेक्मे के साथ ही महिलाओं पर आधारित फम संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले ये सुनते हैं यह संदेश।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

मीडियम ही 197.2 मीटर यानी 1521 किलो हर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा लीजिए पेश है फिल्म बवाल से। लक्ष्य कपूर, आकाशदीप सेन गुप्ता और सुरमा तिवारी की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है कौसर मुनीर तथा संगीतकार है आकाशदीप सेन गुप्ता।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा यानद लेते हैं जुबैन नोटियाल और तुलसी कुमार के युगल आवाजों में फिल्म श्रीकांत से। श्लोक लाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है तनिष बख्शी ने।

अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में श्रोतव्य अपने आनंद लिया। हसीन दिलरुबा फिल्म से यकुबसत नगमा। इस गीत के गीतकार थे क्षितिज भरद्वाज तथा संगीत दिया था अमित द्विवेदी ने। गीतकार कुमार के लिखे बोल पर बी पराग, विशाल ददलानी और शेखर रवजानी की आवाजों में आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म फाइटर से। संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं इस समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तावंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं विशाल मिश्रा के आवाज में फिल्म योद्धा से। गीत कौशल किशोर की और विशाल मिश्रा के है तथा संगीत विशाल मिश्रा का।

0: Și eu tot care cam ca la nagma sunt de pe lei sunt de heia sunt diș.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: शोधन कार्यक्रम का अगला नगमा यम आपको सुनवाते हैं जुबे नोटियाल और साथियों की आवाजों में फर्म मिस्टर एंड मिसेस माही से। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है तनिष बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा यह आनंद लेते हैं परंपरा टंडन की आवाज में फिल्म दोपति से। शफरचना कौसर मुनीर के है तथा मौसी के सचेत परंपरा का

श्रोताओं, परंपरा टंडन के गाये फम दो पति के सी नगमे के साथ ही फम संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय संध्या के 4:30 वह है और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित शिव कुमार शर्मा से राग 10 पर संतूर वादन तथा तबला पर साथ दे रहे हैं आनंद चटर्जी। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

पर संतु वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे आनंदो चटर्जी। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात में एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अरुणाचल प्रदेश के सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR आज प्रकाशित कर दिया गया। राज्यसभा सांसद ताई तागक ने रिवॉच का दौरा कर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज यानी यूवॉच की प्रस्तावित स्थापना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारी जिला उपायुक्त मामू हागे ने आगामी इंद्रजीत नामचुम अरुणाचल लीग INAL 2.0 की तैयारियों को लेकर पापुमपारी जिला प्रशासन और INAL टीम के बीच समन्वय बैठक की अध्यक्षता की और एशियाई खेलों में 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को पानी की कीमत समझनी होगी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा है कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित संसाधनों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों पर के निरंतर प्रयासों के साथ जन भागीदारी के भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्र सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी

0: पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार।
0: गृह मंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन भी जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
3: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग।
0: अरुणाचल प्रदेश की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR आज प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन के अनुसार राज्य में अब कुल 6,96,026 मतदाता है। इनमें 3,43,709 पुरुष, 3,52,315 महिलाएं और तीसरे लिंग के 2 मतदाता शामिल है। राज्य का जेंडर अनुपात 1,025 है। इसके अलावा 5,552 सेवा मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची के 8,803 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1,924 नाम हटाए गए हैं। नागरिक अपने विवरण की पुष्टि अपने स्थानीय बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण संबंधी किसी निर्णय के खिलाफ अपील करने के इच्छुक व्यक्ति 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकते हैं। सहायता के लिए जनता राज्य को टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन 0360-1950 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर है 0360-1950 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने रिवॉच का दौरा कर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज यानी यूवॉच की प्रस्तावित स्थापना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दौरे के दौरान सांसद ने रिवॉच और पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई कोचिंग कक्षाओं में भाग ले रहे अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी APPSC के 10 अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी तैयारी में केंद्रित और अनुशासित बने रहने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के युवा अभ्यर्थियों तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन पहुंचाने के लिए किए जा रहे इस सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की। सांसद ने रिवॉच के शोधकर्मियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने संस्थान में चल रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने रिवॉच के शोध गतिविधियों, सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों तथा पिछले वर्ष में तैयार किए गए विभिन्न शोध निष्कर्षों और प्रकाशनों की भी सराहना की। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला उपायुक्त मामू हागे ने

현인은 다 우석 조치 와주시 크리스니로 더 복성에서 나서

Sous-titrage Société Radio-Canada.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 6:10 हैं। लीजिए श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से 2 देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लिरिम में ग्यांगर गांव के अमा दोर्जी युटन और साथियों से गुंचक सुम्पा डोलमा संपा लुंडु पर्चे लमजिल क्यावे शब्दन चंडेजक तोयपा एक्या और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज की कविता में मोन्यूल विद्या निकेतन स्कूल तवांग के 5वीं कक्षा के छात्र कर्मा निमाटाशी से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा खेलने वाला। आज शाम 7:11 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म साजन से चंद नगमे। आज शाम 7:25 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम अपने दर्द अपने लोक में तवांग उपनगर और उपनगर क्षेत्र में रहने वाले बेसहारे जानवरों को तवांग उपनगर से बाहर ले जाते हुए और तवांग उपनगर में साफ सफाई को बनाए रखने विषय पर मोनपा मिमंग सोपा के सोशल सर्विस सेक्रेटरी श्री सिरिंग डुंडुप से हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता होंगे दुर्जी रमा। आकाशवाणी के डनगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा न्यूज सेट 9 रात्रि 9 बजे। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोतों ये तो थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोतों अब हम आपको कल यानी 23 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा कल का सफा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत चंद शिव महिमा भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे जयंता हजारिका की आवाज में चंद असमिया फिल्मी आधुनिक नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात में सीडीपीओ तवांग के एडवोकेट रिंजन वांगो से एन अवेयरनेस ऑन फंक्शनिंग ऑफ वन स्टॉप सेंटर तवांग विषय पर चंद संदेश।

कलों पर तीन बजकर 33 मिनट पर सुनेगा महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म आई हैड लव स्टोरी से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में, फिल्म ऊंचाई से नकशीश अजीज की आवाज में, फिल्म सुल्तान से राहत फदीली खान की आवाज में और फिल्म ओम शांति ओम से के स्वर में चंद नगमे। कलों पर 3:50 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाजों में, फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर के स्वर में, फिल्म सुरमा से दलजीत दुष्यंत की आवाज में, खेल खेल में फिल्म से विशाल मिश्रा और जारा एस खान की आवाजों में, क्या यही प्यार है फिल्म से अलका याज्ञिक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में, जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म से अलका याज्ञिक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में, फिदा फिल्म से उदित नारायण और अलका याज्ञिक के शुरू में, सायराना फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका परेख की आवाजों में, और बागी 4 फिल्म से जोश बरार और परंपरा टंडन की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कल संध्या 4:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल संध्या 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अन्य प्रसारित हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 सुनेगा मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत रोजाना की तरह नमधर लेरिम। कल शाम 5:35 पर कल शाम 5:40 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम नंगचुई कलम। 6 लेरिम से 6:10 पर कार्यक्रम जरोका। कल शाम 6:20 पर सुनेगा आचार्य थोपतन ताशी और साथियों से गुंचक सुम्पा, शेरचन मुनगोचन और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कल शाम 7 हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर सुनेगा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कल शाम 7:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित करेंगे। कल शाम 7:55 पर सुनेगा महेंद्र कपूर की आवाज में उपकार फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल रात्रि 8 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कल रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। कल रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा रात्रि ठीक 9 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम झरोका समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में। अब से कुछ ही पलों में कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

Kurwa chise matonga nyama ni batu jeye

인바나 이예제조 메바수와데 우예간로 논라에 종사하지 우보리동스바데조 메 우예베마중네 나소바데

சி பஜே சி நோ சோ நங்கே பஜே.

이당 서재물 좋으니 두제달라 지게로 지베다서 남나로 고베달라 물도 전디베다서 발제해서

Chi ye ba che chi ro se nang ye ba che nang ro se sa ve

Om Ahom Beza Guru Bema Sidhya Sidhya.

0: Ciao.
1: Sharma. गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं

0: परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगली चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। President Draupadi Murmu presented the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Gujarat today. The ceremony honoured outstanding cinematic achievements for the year 2024. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories. Veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award for the year 2024. Article 370 received the Best Feature Film Award, while Yami Gautam was honored with the Best Actress.

0: नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम कर्मा नीमा टाशी है। मैं पांचवी कक्षा का छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम मंजुल विद्या निकेतन तावंग है। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। खिलौने वाला हुआ देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद है एक पैसे वाली, छोटी सी है मोटर गाड़ी, सर सर सर चलने वाली, सीटी भी है। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। धन्यवाद।
1: इस शोध में आपने सुना मंजुल विद्या निकेतन स्कूल तवांग के पांचवी कक्षा के छात्र कर्मा निमा टाशी से कविता। कविता का शीर्षक थे खिलौने वाला। श्रोता जी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:12 हुए हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म सी। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं फिल्म साजन से चंद नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है अलका याज्ञिक और एसपी बालासुब्रमण्यम के युगल स्वरों में। इस फिल्म के गीतों को लिखा है समीर ने तथा संगीत दिया है नदीम शवन ने। तो आइए आनंद लेते कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, कुमार सानू और अलकैदमी के गाये फम साजन के इसी नकमे के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फम से अभी पर समाप्त होता है।

0: आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:25 हुए हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं तवंग उपनगर और उपनगर क्षेत्र में रहने वाले बेसहारे जानवरों को तवंग उपनगर से बाहर ले जाते हुए और तवंग उपनगर में साफ सफाई को बनाए रखने विषय पर मोनपा मिमंग सोकफा के सोशल सर्विस सेक्रेटरी श्री सिरिंग डुंडुप से हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दुर्जी ड्रेमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज

0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है मोनपा मिमांग छोकपा के सोशल सर्विस सेक्रेटरी श्री चिरिंग दोनुप जी को। चिरिंग दोनुप जी, सबसे पहले तो आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में और हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी।
1: धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय रहेगा तवांग उपनगर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखना। तो आज हम चिरिंग दोनुप जी के साथ बहुत सारे साफ सफाई को लेकर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से जो बेसहारे जानवर तवांग उपनगर क्षेत्र में खुले छोड़े हुए हैं, उनको उन्होंने जो

0: नियुक्त किया गया है। अब शायद लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस पद को संभालते हुए। तो मैं और हमारे जो तमाम श्रोतागण है, हम जानना चाहेंगे कि आपने अब तक सोशल सर्विस सेक्रेटरी के जो पद है इसको संभालते हुए क्या क्या गतिविधियां की है और आपके अब तक के योगदान या फिर आपकी उपलब्धियां क्या क्या है, हम जानना चाहेंगे।
1: धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूंगा। टच दिले और मेरा नाम सिरिंग डंडुफ है और मैं मनपा मिमोंग सोकपा का एक सोशल सर्विस सेक्रेटरी हूं। हमारा ये साफ सफाई का काम जो कब से और ये कैसे हुआ इसने पूछा, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा, मैं ये इस पद को लेके लगभग 3 महीना कुछ हुआ है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ऐसे घूमने गया था कि ये पहाड़ इलाका ये सब में था कि हमारा सोर्सेस जो पानी है उसके आसपास बहुत गंदा था, जैसे झील हमारा हो गया जिसे कहते हैं पंगतेंग सोक, फिर उसका ऊपर है हमारा नोगुला लीक, तो ये सब घुमा उसका। तो वहां से नीचे आते समय हमारा इंजिंग में फू जो हमारे इस तवांग के इस इलाका का हम लोग देवता मानते हैं, तो वहाँ तो उन जगहों पे बहुत सारा गंदा था। तो वहाँ पे एक डस्टबिन में रखा था, ओवरफ्लो हो गया, पूरा गंदगी फैला हुआ। तो आगे जाके मैं अभी बताया था पंगतिंग सो है, उसके सामने भी पूरा गंदगी फैला हुआ था। और तो मैंने इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर किया, उसके बाद BRO 125 उसके अंदर आते हैं उसके साथ, और आर्मी पर्सनल जो ब्रिगेड से मैंने बात किया। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा साथ दिया, वहां से जो नीचे डस्टबिन था जो ओवरफ्लो है, तो उसके बाद में हम लोग पूछताछ किया तो वहां पे डूडा गाड़ी रोज नहीं पहुंच पाता। तो डूडा गाड़ी वैसे मेरे ख्याल से ज्यादा भी नहीं, टाउनशिप का अंदर ही मेरे ठीक से नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए वहां में सिर्फ इनकमिंग है, मतलब सिर्फ कचरा डस्टबिन रखा है तो डालते जा रहे निकल के ले जाना कोई नहीं। तो DC मैडम से बात किया और बहुत ये वरिष्ठ लोग से मैंने बात किया, तो उन लोगों ने बताया कि इस चीज को उठाने से ठीक उसको उठा दिया। वो डस्टबिन को उठा के मैंने सोशल मीडिया के थ्रू भी बताया था कि पहाड़ में आप जो भी घूमने जाएगा जो कचरा आप लेके जाता है आप उसको लेके वापस आना है, पहाड़ में कचरा फेंकना ही नहीं, मतलब ये सिस्टम नहीं करने सीखे। इस तरह से मैंने काम किया।
0: जी, तो आपने अपने पद संभालने के बाद जो कार्रवाई की शुरुआत की वो जो है पहाड़ों में जहाँ पे पिकनिक स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ से की है। हम देखते हैं कि डस्टबिन या कूड़ेदान जहाँ पर लगाए होते हैं वो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब वहाँ पर कूड़े हम फेंकते हैं डालते जाते हैं तो उसे समय पर समेटना, तो वहाँ पर समेटने वाले नहीं थे, तो आपने वहाँ से कार्रवाई शुरू की है ना। जैसे कि आपने जिस तरह से हमें बताया कि झीलों के आसपास में कूड़े कचरे फैलाए हुए हैं और जहाँ पर देवी देवताओं की जगह है, तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पर तो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग तो जाते ही हैं और साथ साथ में बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ के लोगों को तो हम समझाते ही हैं और यहाँ के लोग काफी लोग पालन भी करते हैं इसे, तो इसमें जो है टूर ऑपरेटर्स का क्या भूमिका होता है, आपका क्या विचार है इस पर?
1: हाँ, इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बताया है ये सोशल मीडिया के थ्रू, तो आज मुझे मौका मिला है ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू से बोलने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा बोलने में। तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो आज जो पिकनिक स्पॉट है झील के आसपास से जो गंदगी कर रहे हैं, जो मैं टूरिस्ट को कभी नहीं कहूंगा कि वो लोग ही कर, यहाँ पे ज्यादा हमारे यहाँ के ही अपना लोकल
0: जी, जी, जी, जी।
1: क्योंकि 6 मंथ जैसे तो हमारा टूरिस्ट आता भी नहीं है, तो इसमें वो गंदगी का, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग वहाँ पिकनिक करते और वहीं पे गंदगी फेंक, ये पहले की बात है जो हम लोग देखा था आदमी बहुत को। तो मैंने सोशल मीडिया में बताने के बाद देखा कि बहुत लोग का सर में घुसा भी, अच्छा लगा। मैं कल परसों भी घूमने गया था, चुपचाप से मैंने देखा बहुत पिकनिक करके कचरा ऐसे फैला रहा था वो, थोड़ा बाद में वो लोग क्या किया पूरा को एक ठेला में बंद करके साथ ले गए, तो बहुत ही अच्छा लगा। कोई कोई लोग सुधर रहा है, तो इसी तरह पूरा सुधरने से अच्छा है। और दूसरी बात, ये जो हमारा टैक्सी ड्राइवर है उसका बहुत इसमें हाथ होना चाहिए, इसमें योगदान होगा, क्योंकि साफ सफाई के जैसे कि नीचे से जो टूरिस्ट आता है तो सबसे आगे होटलर्स को मिलता है, तो होटलर्स को भी हमने बताया तो वो लोग क्लियर बताना है कि यहाँ पे आप जो पिकनिक जाएंगे तो वहां में अब खाने पीने का जो भी सामान लेके जाते हैं अब वहाँ फेंकना नहीं, एक तो वो लोग समझाता है। दूसरी बात, ऑन स्पॉट में प्रैक्टिकली जो साथ में कौन होगा वो होगा ड्राइवर, ड्राइवर भी है प्लस गाइड भी जानते हैं आगे। ड्राइवर का एक रोल ये है कि वो बताना है कि टूरिस्ट को आप लोग खा पीजिए, लेकिन यहाँ भी गाड़ी के अंदर एक ठेला भी रखा हुआ है जो हम लोग कुछ भी कचरा है तो उसमें डाल के वापस लेके आपको जो हमारा मार्केट में डस्टबिन मिलता है या आपको MRF है वहाँ पे लेके फेंकना है, तो वो जो दिया हुआ है तो उसमें कचरा फेंकना है, क्लियर वो लोग को बताया हुआ है। तो वो लोग टूरिस्ट को बताना है कि अभी जितना भी कुछ आप लोग लेके जाता है तो आप खा पीजिए, लेकिन आप बाहर में बिल्कुल नहीं फेंकना, अगर फेंकेंगे फाइन भी होगा। और दूसरी बात ये है कि आप बिल्कुल नहीं फेंकना, अगर ड्राइवर बता देगा तो मेरे ख्याल से सोचता है कि टूरिस्ट को भी नहीं फेंकना,
0: क्योंकि कहते हैं ना जो कोई भी अच्छी कार्य हम चाहते हैं कि दूसरे करें, लेकिन वो अगर सही रहता है सबसे पहले हम खुद करें या अपने घर से शुरुआत करें, तो है ना। तो जैसे टूर ऑपरेटर्स या

0: टैक्सी चालक हैं, तो वो कर भी रहे हैं, अपने भूमिका निभा भी रहे हैं, टूरिस्ट को समझा भी रहे होंगे, और मुझे आशा है हमारे इस चर्चा को सुनने के बाद वो और भी बेहतरीन रूप से काम करेंगे इस पर। और आप कह रहे थे झील के बारे में, जैसे कि हम सभी को पता है कि यहाँ के जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है झीलों से आते हैं, तो आप वहाँ पर खुद पहुँचे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो तवंग उपनगर में जो पेयजल या फिर हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं वो कितनी साफ और सुरक्षित है।
1: मैंने 1 जुलाई 2021 में गया था, तो मैंने उसका जो हाल देखा था, मुझे बहुत ही दुख लगा। वहाँ पे जो हमारा नोगला में जो बीआरओ के लेबर हैं, तो उसका वहाँ पे जो टॉयलेट जो है वो बिल्कुल पक्का नहीं है, पूरा ओपन है, जो हमारे सरकार ने इतना साल से बताता है कि ओपन डिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे उसका पूरा उल्टा है, पूरा पहाड़ में पूरा ऐसा, क्योंकि पहाड़ पूरा खुला है, तो इस डजन मीन कि वो लोग वहाँ पूरा हर जगह में खुला करेगा, पूरा तो वहीं से आता पानी पीने का समय जो पूरा वहीं से आता। तो मैंने इस बात के लिए मैंने बीआरओ ओसी से बात किया, उसका तो वहाँ जो नीचे में जो आर्मी रहता है सामने पोर्टर एक तो ट्रांसिट कैम्प है, तो वहाँ पे वही हाल, बाथरूम वाला जो मैंने बात किया कि उसको आप तुरंत इसमें आप सेफ्टी टैंक 100 फीट लगा के आप बाथरूम बनाना है, तो तुरंत वो लोग भी माना है। उसका तो अभी लगभग 6 बाथरूम कुछ बना चुका है वो लोग ने, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, मैं कल परसों जाके आया। फिर उसके बाद वहाँ से जो पानी हमारा जो नीचे आता है, कोई कोई लोग वहाँ में पानी में कपड़ा भी धुलाता है, वो भी ठीक नहीं, डिटर्जेंट है उसमें क्या किया, तो वो लोग भी मना किया कपड़ा मत धुलाओ, क्योंकि ये झील है, हम लोग एक सेक्रेट एक बहुत बड़ा हम लोग देवता लोग रहता है, पूरा जानता है हमारे जहाँ में, तो आप लोग ये सब करता है तो इसका इफेक्ट जो हम पूरा को होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा पवित्र है तो आप लोग साफ से रखिए, लोगों को बताया। वहाँ में एक चीज ये था कि जहाँ लेबर कैंप है वहाँ से एक पानी को डाइवर्शन करके हमारे झील के अंदर फेंका, जो गंदा पानी पूरा वहाँ जाता था,
0: वो जो यहाँ में जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टाउनशिप में आते हैं मिल सकते हैं ना?
1: नहीं, वो मिल जाता।
0: अच्छा,
1: तो उसको वो ज्यादा दिन नहीं हुआ था, ये बना के 1 वीक कुछ हुआ था जब मैं, तो मैंने तुरंत उसमें वहाँ का जय साहब और ये उन का कोई सिविल ऑफिसर भी है, ये यही है, तो उससे बात की, तुरंत मैंने विदिन ए वीक उस नालों को डाइवर्शन करके उसको हटा दिया, और वो भी हट, तो उसका तो वो पानी भी डाइवर्ट होकर अलग जाएगा। देखिये वो शेलिंग वाला कवर से मेरे ख्याल से मैंने बहुत से पूछताछ किया था, तो उसमें कुछ बारूद लीट नाम का कुछ कुछ चीज होता है, जो आज हम पानी पीते समय बॉयल करके भी पियो तो उससे फायदा नहीं होने, वो मेरा इफेक्ट होना ही है, मतलब मैं ये बड़े वरिष्ठ लोग से पूछा था, वो चीज जो अगर हमारे पेट में जाता है तो सबसे आगे उसका अटैक होता है हमारा किडनी में, और दूसरी बात कैंसर, तो ये सब होता है और कैसे पता है।
0: और चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जो आपने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी अपलोड किए थे कि जो बेसहारा जानवर जो खुले आम तवंग उपनगर में छोड़े हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आते हैं, विशेष रूप से जो आप कह रहे थे कि यातायात में प्रभाव पड़ते हैं, तो और शायद आपने कल से इस पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया, तो इसको लेकर विस्तार रूप से हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो मैं इससे आगे एक छोटा आगे बोलना चाहिए था, तो मैं इसमें बोल देता हूँ।
0: बेशक बोलिए।
1: तो हमारा ये सोशल सर्विस पंगतिंग सो है लेके हमारा ये तवंग के अंदर जो मैंने किया था, उसके बीच में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ तवंग यूनिट मेमो सोपा का और सेक्रेटरी जनरल सबसे हम लोग डिस्कशन करके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद एनजीओ आर्मी सबसे डिस्कस करके हमने एक अगस्त 29 में एक बहुत बड़ा एक सोशल सर्विस का आयोजन किया था, तो वो जो हम नोगला से लेके यहाँ तक बुद्धा पार्क तक किया था, तो बहुत ही सक्सेस रहा। कुछ हम किलोमीटर में गिना तो 17 किलोमीटर कुछ था, तो 17 किलोमीटर कुछ किया था, उसमें मेरा बहुत ही हेल्पफुल हमारे एनजीओ स्टूडेंट ये पुलिस पर्सनल मार्केट इलाके ने बहुत हेल्प किया था, तो बहुत अच्छा सोशल सर्विस हुआ था। जो आपकी क्वेश्चन जो पता ये स्टे एनिमल के बारे में, अभी स्टे एनिमल के बारे में तो अभी किसी हमारा हाईवे से लेके मार्केट एरिया स्कूल हो या ऑफिस हो या सब में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो ये बहुत सा कम्प्लेन भी आया था, हम खुद भी ऑफिस जाते हैं, हम लोग भी देखा सुबह हम लोग इतना फ्रेश हो गए, सुबह थोड़ा मूड भी अच्छा होता है, हर दिन का थोड़ा फ्रेश हो गए, ऑफिस जाते हैं देखते हैं गोबर से भरती है, तो स्कूल का भी वही हाल हुआ था, ये हमारे कॉलेज में भी ऐसे हाल था, तो स्टूडेंट लोग वहाँ जाता है टीचर पढ़ाने जाते हैं वहाँ में ये हाल हो जाता, और मार्केट एरिया में तो क्या दुकानदार लोग परेशान, बाहर में सामान रखो आगे उठा के खा देना, और ये हाईवे साइड में जो है उसका वजह से तो हमारे यहाँ में बहुत एक्सीडेंट भी हो, कुछ साल पहले की बात है हमारा एक लड़का मर भी गया स्टे एनिमल की वजह से।
0: अच्छा।
1: ये चंगू साइड में रिसेंटली ही हमारा 3-4 केस हमको बताया गया है, ये आपका हाईवे में ये गोरा लाके ये 2 दिन गाड़ी नाला में घुसा था, वो ग्रेस में रखा था, उसका बोलता था 70-80,000 किया, बोलता अभी क्या करे लोग इतना परेशान कर रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने उसके बाद ये चीज जो ठीक नहीं है तो मैंने ये चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन किया तो बताया हाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसका ऑर्डर ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो हमको दिखाया
0: दिखाया
1: तो ऑर्डर तो ऑलरेडी है, ऑर्डर हम लोग निकल के रखते हैं तो कोई मानने वाला है नहीं, तो इसके पीछे फॉलो करने वाला चाहिए, तो हम लोग जो पकड़ने जाता है तो छिपा भी देते हैं, ऐसे भी हुआ बहुत।

0: अच्छा, ये जो बेसहारे जानवरों के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या ये सचमुच बेसहारे हैं या फिर उनके मालिक हैं पर वो देखते ही नहीं है?
1: इसमें सच तो ये है कि उसका मालिक है,
0: अच्छा,
1: वो लोग छोड़ के रखा हुआ। अभी क्या करता है ना, अभी जो जिससे दूध मिलता है, जिससे जो खाने पीने को मिलता है उसको देखता है, जो अभी है मेल उससे कुछ मिलता नहीं है, तो उसको अच्छा। लोग क्या करते हैं, छोड़ के अपना आसपास ही रखना देखना चाहता है, पता नहीं किस लिए रखना चाहता है वो मालूम नहीं। अगर वो नहीं पालना चाहते, किसी दूसरे को जो हम लोग बोलते हैं मम्पा में सेलर बोलते हैं ना,
0: अच्छा।
1: ऐसे ही कर सकते हैं, जब कोई पकड़ नहीं जाता है ऐसे कुछ खबर मिल जाते गायब हो जाते, अच्छा। मालिक है फिर थोड़ा शांति होते तो पूरा निकल जाता। अब गाय तो वो तो जानते नहीं होगा ना कि हम लोग पकड़ नहीं आ रहे, वो तो जानते, हमको डाउट लगा ऐसे है लगा। सोसाइटी का एक रियर्स के लिए हम ये काम दिया है तो हम तो रुकेगा नहीं मैडम, तो इसमें आप लोग हमको ऑर्डर दीजिए उसका। तो बोला मेरे ऑर्डर ऑलरेडी है, तो हम लोग ने एक टीम बनाया उसका। हम लोग ने टीम बनाने के बाद इससे आगे हम लोग ने ये सोशल मीडिया का थ्रू बहुत बताया, ऑर्डर भी दिखाया, व्हाट्सअप हो गया आजकल तो ये सब चलता है, तो बहुत बार बताया ऑनर लोग को भी, मतलब हम लोग ने बताया। तो कोई कोई ऑनर तो ये बताया कि हाँ मेरा है, लेकिन हम लोग उसको रख भी नहीं सकता है, क्या करेगा उसको कैसे पालेगा, तो आप लोग पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए शुक्रिया। आप ले जाओ कैसे बताया रेडियो सेंटर, अभी टेशी दोर्जी सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि सर आप रेडियो में एक दो बार बता दीजिए, तो सर ने भी बताया। उसके बाद हम लोग ने मम्पा भाषा या सब कुछ में ये सोशल मीडिया में तो बहुत बताया, तो उसके बाद हमने एक डेट फिक्स करके 21 जो कल था 21 से हम शुरू करेगा। तो हम लोग कल जो 21 को जो इस एनिमल को हम लोग पकड़ा, तो उसमें लगभग हम लोग 20 के आसपास पकड़ा था, मेल था और दो फीमेल था। जो हम पकड़ा है उसको एक डेस्टिनेशन, अच्छा एक जगह है जहाँ पे सब सेदर बोलता है वहाँ पे पहुँचाता है। तो कल रात को शाम को हमने पूरा यहाँ से हमारा आदमी के साथ उसी मैक्स के साथ हम लोग ने वहाँ पे पहुँचा लिया।
0: जी, जो बेसहारे जानवर थे दबंग उपनगर के अंदर से तो पकड़ के उनको सुरक्षित जगह पर लेकर गए, लेकिन वो जगह कौन सी है और वहाँ पर क्या उनको सारे जो खाने की जो चीजें हैं, घास और पीने के लिए पानी, और या फिर उनको रहने के लिए अच्छी जगह है या नहीं, क्योंकि वो तो बेजुबान है, ना समझ है, तो कहीं ना कहीं से ये जिम्मेदार हमारे बनते हैं, है ना?
1: हाँ, इसके लिए मैंने सर्वे किया था, हमारा दबंग के यूनिट के सेक्रेटरी संजय फुंसु सर और हम लोग ने इसका सर्वे किया था। तो इसमें जो हमारे यहाँ में तवांग पे एक दंगिन सोपा है, आप जानते हैं, तो उनसे वो लोग से भी डिस्कशन किया कि किस जगह में ठीक हो, जो हमारा ये स्ट्रे एनिमल है जो बाजार में तो रख नहीं सके, उसको प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो लोग को भी एक अच्छा जगह, इसमें वो लोग खुद का भी जान खाता, हम देखा है रास्ते में वो लोग भी मरा हुआ, बहुत बार गाड़ी से लाके मरा हुआ देखा, तो हम लोग इसको एक अच्छा जगह ले जाए। तो सुना है कि वो जो हमारा तकसंग से नीचे जो जाते जिमना जाने का, तो उसके बीच में जो बहुत बड़ा जंगल और मीडो है वहाँ पे, जो वहाँ पे बहुत सारा रुकपा है, तो वो लोग पूरा चराव वहीं करते, तो वहाँ पे इतना ठंडा जगह भी, तो वहाँ जंगल भी है, घास है, पानी है, बहुत सुंदर जगह है, मतलब देखा जाएगा तो एक ये जानवर के लिए स्वर्ग जैसे। तो वहाँ पे हम लोग भी गया था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, तो वहाँ का ब्रोकपा से बात किया, और वहाँ में एक चीज एक खुश की बात ये है कि वहाँ का आदमी लोग बाप नहीं करते, पंक्चिन बोल के स्वच्छ बोलते है ना मुंबई, ये सब पूरा बंद, ये सब बन किया, तो वहाँ सबसे बड़ा सेफ्ट है, खाने पीने का अवेलेबल है वहाँ पे, और ब्रोकपा लोगों को ये भी बताया कि आप लोग थोड़ा देख दीजिए, वो लोग बोलते चिंता मत,
0: वहाँ के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है?
1: नहीं, वहाँ के किसी को आपत्ति, वो लोग का गाँव बुरा है से बात किया, तो उसमें वहाँ छोड़ दीजिए।
0: चलिए, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और आपने बताया कि इसमें जो है हमारे जिला प्रशासन तवंग की बहुत ही अच्छे तालमेल है आपके साथ, मम्पा मेमांग त्सोपा के साथ, और काफी सहयोग भी मिला है, लेकिन इसके साथ साथ जबकि ये जानवर और साफ सफाई की मामला है, तो इसमें डूडा डिपार्टमेंट और वेटनरी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ के, तो उनसे क्या सहायता मिली है आपको?
1: इसमें हमें हमारे साथ ये डूडा डिपार्टमेंट हो गया और वेटनरी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा सहयोग दे रहा है, पूरा डिपार्टमेंट जो जो नीडेड है, हम जो मदद मांगा है, वो लोग सब ने बहुत ही अच्छा हेल्प किया है, डूडा वाला भी हेल्प किया है, और ये कल जो ये हमारा जो स्ट्रे एनिमल को पकड़ता है उसमें हमारा वेटनरी की तरफ से भी 2-3 स्पॉट लुक दिया है, वो लोग दिया है।
0: फिर तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। और जैसे कि आप सोशल सर्विस सेक्रेटरी है, मेरी मानना है कि ये पद जो है सबसे जिम्मेदार वाले पद है, क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण काम यही करते हैं, है ना? इसमें जो है, अब जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ के लोग शत प्रतिशत जो है, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो काफी धार्मिक है, तो इस तरह से जो है हम पहाड़ों में जाकर प्रेयर फ्लेक्स जिसे हम कहते हैं ना, धर्म ध्वज, तो धर्म ध्वज को फहराते तो है, लेकिन समय पर फिर उसको जाकर देखते नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए होते, कई बार नीचे गिर जाते हैं, मिट्टी से मिल जाते हैं, उस पर जानवर सोते हैं, चलते हैं, लोग चलते हैं, तो इस तरह से ये जो कचरे बन जाते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है?
1: इसके लिए मैंने बहुत बड़ा लामा चोरी मिछे की पद की बराबर कुछ है, उन लोगों से डिस्कशन किया मेरा, क्योंकि मैंने भी बहुत बार गया था ऊपर में, हर जगह

0: पेड़ में बांध के इधर उधर बांध के कोई भी मतलब क्या बोले उसको डिसिप्लिन से लगाया हुआ नहीं, मतलब पूरा तेधर पेधर करके लगा और पेड़ में उसमें क्या है बहुत इफेक्ट होता है, पूरा पेड़ दब जाता है, वो सूख जाता है और वो जो आपने बताया पुराना हो जाता है, गिरता है जानवर से। तो इसके बारे में मैंने लामा जी से पूछा कि ये क्या फ्लैग जो ऐसे होना क्या हम लोग ये लगाना जरूरी भी है। तो लामा जी ने बताया कि हमारा एक श्रद्धा अपना एक विश्वास है, एक्चुअली फ्लैग को लगाता है तो उसको साफ सुथरा जगह अच्छा जगह लगाना, तो इससे अच्छा तो आप लोग मतलब इसके जगह में 2 रुपया खर्च जो आप कर रहे हैं उससे गरीब आदमी या किसी को देने से ज्यादा अच्छा है। तो मैंने उसको अभी ये हमारा विश्वास है, पुरखों से हमारा आदमी चलता है, हम भी बाहर में जाने से एक झंडा लगाने का दिल होता है, नहीं उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हम लोग ये इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि आप वहाँ जाता है तो पेड़ और ये पौधा में थोड़ा संभाल वहाँ मत लगाइए। तो इसके लिए अभी हम लोग एक इंस्टेंट एक प्रोग्राम हम लोग मेरा इसमें बना के रखा हुआ है, हम डिस्कशन भी किया। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा जो यहाँ से जाने के बाद आपका निंगमेफू बोलता है जो हमारा देवता जो रहता है वहाँ पे हम 2 पोल के हम डिमांड किया, 2 पोल इलेक्ट्रिक पोल या कुछ मतलब पोल उसको ला के सीढ़ी ला के 2 पोल आगे गुम्बा के सामने और 2 पोल पीछे तो वो लगाएंगे, वो जो फ्लैग के लिए होगा
1: तो वो निर्धारित जगह होंगे।
0: तो मैं वहाँ लगाना चाहता हूँ, लगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, मतलब इसका कार्रवाई चल रहा है और आगे जो झील है वहाँ भी 2 इस तरह से करके मतलब 10 जैसे चाहिए, तो मैं इसके लिए अभी मतलब कोशिश कर रहा हूँ
1: जी। तो मन मर्जी से कहीं लगाए ना ये संदेश देते हो।
0: जो मैं पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचे और वहाँ पे लगाने से क्या होगा कि मतलब एक जगह डस्टबिन देने से वहाँ पुराना होता है तो निकाल के हम कहीं भी मतलब उसको जलाना ये सब ना वो कर सकते हैं। तो इससे हो सके तो साफ सुथरे जगह में ही लगाने से ठीक है।
1: तो चरिंदनुप जी, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं। तो आज आपने हमारे कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में शामिल होकर हमारे श्रोताओं को बहुत सारे स्वच्छता को लेकर साफ सफाई को लेकर जानकारियां दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, भी आपने सुना तवांग उपनगर, तवांग उपनगर क्षेत्र में रहने वाली और श्रोताओं, भी आपने सुना तवांग उपनगर और उपनगर क्षेत्र में रहने वाली बेसहारे जानवरों को तवांग उपनगर से बाहर ले जाते हुए और तवांग उपनगर में साफ सफाई को बनाए रखने विषय पर मोनपा मिमांग चोकपा के सोशल सर्विस सेक्रेटरी श्री सिरिंग डुंडुप से हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दुर्जी ड्रमा। श्रोतांशी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग समाप्त होता है। आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 72वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों के माध्यम से वर्ष 2024 के लिए फीचर, गैर फीचर और सिनेमा पर लेखन सहित विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट सिनेमाई योगदान को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक समय तक उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 1954 में स्थापित ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान है। अरुणाचल प्रदेश की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईएन आज प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन के अनुसार राज्य में अब कुल 6,96,026 मतदाता है। इनमें 3,43,709 पुरुष, 3,52,315 महिलाएं और तीसरे लिंग के 2 मतदाता शामिल हैं। राज्य का जेंडर अनुपात 1:25 है। इसके अलावा 5,552 सेवा मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची में 8,803 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1,924 नाम हटाए गए हैं। नागरिक अपने विवरण की पुष्टि

0: स्थानीय बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण संबंधी किसी निर्णय के खिलाफ अपील करने के इच्छुक व्यक्ति 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकते हैं। सहायता के लिए जनता राज्य की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 03601950 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट करें, नंबर है 03601950। बीएसएनएल ईस्ट 2 टेलीकॉम सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक रामेश्वर प्रसाद ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस दौरान राज्यभवन में बीएसएनएल के दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और उसे मजबूत करने पर चर्चा की गई। विशेष रूप से दूरदराज ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया गया। मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य में संचार नेटवर्क की स्थापना की प्रगति और सामने आ रही चुनौतियों के बारे में राज्यपाल को जानकारी प्रदान की। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को हो रही परेशानियों को भी स्वीकारते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के पर सहमति जताई है। राज्यपाल ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के रूप में बीएसएनएल की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि संचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, खासकर ऐसे दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में जहां निजी ऑपरेटर्स की मौजूदगी सीमित हो सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मजबूत कनेक्टिविटी दूरियों को कम करने, सेवा वितरण में सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाने और विकसित एवं डिजिटल रूप से जुड़े अरुणाचल प्रदेश के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राज्यसभा सांसद तातागत ने रिवॉच का दौरा कर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज यानी युवाच की प्रस्तावित स्थापना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। दौरे के दौरान सांसद ने रिवॉच और पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई कोचिंग कक्षाओं में भाग ले रहे अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी APPSC के 10 अभ्यर्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी तैयारी में केंद्रित और अनुशासित बने रहने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के युवा अभ्यर्थियों तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन पहुंचाने के लिए किए जा रहे इस सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की। 2003 बैच के APCS अधिकारी डॉ. अशोक ताजू ने आज अपर सियांग जिले के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर एक समक्ष प्रशासक के रूप में सेवाएं प्रदान की है। अरुणाचल प्रदेश सब जूनियर बॉयज राज्य फुटबॉल टीम के सिलेक्शन ट्रायल के लिए करीब 90 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। ये टीम राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। ट्रायल न्यूजर्सी स्थित डॉनमिट फुटबॉल एकेडमी में आयोजित की जा रही है। इनमें 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चयन प्रक्रिया के माध्यम से उन खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए राज्य का टीम का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जानी है। ट्रायल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज लोहित, नामसाई, चंगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Shabashachi Bhattacharya with Regional News. The special intensive revisions SIR of electoral rolls for all 60 assembly constituencies of Arunachal Pradesh have been published today. According to Chief Electoral Officer Pavan Kumar Sain, the state now has a total of 6,96,026 electors. This includes 3,43,709 male voters, 3,52,315 female voters and 2 third gender electors, reflecting a gender ratio of 1,025. Additionally, 5,552 service voters have been enrolled. During the revision process, 8,803 names were newly included and 1,924 names were deleted from the draft roll. Citizens can verify their details with their local booth-level officers. Anyone wishing to appeal an electoral registration decision can do so before the district magistrate within 15 days. For assistance, the public can call the state toll-free helpline at 0360-1950. President Draupadi Murmu today presented the 72nd National Film Awards honoring cinematic excellence for the year 2024 across feature, non-feature and

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ से आफे सतीश अनिजा और बिमला अनिजा, मुरादाबाद दौलापुर उत्तर प्रदेश से आफसफ है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। आप सबके फरमाइश पर आनंद लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए आनंद लेते हैं आप सबके फरमाइश पर यह गीत।

कपर गांव से आप है सुरेश मेलोदी, वर्षा मेलोदी, शारदा मेलोदी और मानसी मेलोदी। आप सबके फरमाइश पर आयाना लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इतिहास फिल्म से अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की युगल आवाजों में। शफरचना समीर के है तथा धुन दिलीप सेन समीर सेन का।

दातारंगी बातापरा छत्तीसगढ़ से आप है हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकीलाल वर्मा। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से आप सब है जगदीश दाखंड नायमा, रंजूभाई दाखंड, युवराज सिंह दाखंड और शिवांगी दाखंड। आप सबने फरमाइश की है फिल्म चलते चलते से किशोर कुमार की आवाज में, गीत अमित खन्ना के है तथा संगीत बापी लहरी का। तो आइए आनंद लेते आप सबके फरमाइश पर यह खूबसूरत नगमा।

श्रोताओं, समय आप आनंद ले रहे हैं। आप श्रोताओं द्वारा वास्तव के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए कार्यक्रम का अगला नगमा आइए आनंद लेते हैं दर्द फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है नक्श लाईपुरी तथा संगीतकार है खयाम। इस गीत की फरमाइश की है नगोड़ा छत्तीसगढ़ से आप है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टुंकिल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। निमानाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसवीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। तो आइए आनंद लेते हैं आप सबके फरमाइश पर यह नगमा।

श्रोतो, कार्यक्रम का अंतिम नगमा आइए सुनते हैं। क्रेमितिंग बस्ती से आप सब है लव सॉन्ग ड्रामा, सिरिंग ड्रामा, फुरफल हामो पासंग सिरी और देचिन संगमो। आप सबके फरमाइश पर आयाना लेते कार्यक्रम का अंतिम गीत मोरा फिल्म से कुमार सानो की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है विजू शाह ने।

श्रोताव्यप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों और कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा आपसे कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विनीता ठाकुर।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर हाजिर हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल और वो भी कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता
1: और रोशमीना देवी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स में लगातार तीसरा वुशु मेडल सुनिश्चित।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक पक्का।
1: और मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी और जादूमणि सिंह का शानदार आगाज, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: और महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया से होगा मुकाबला।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है देश को। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 147 रन से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, and make it 2-2. The defending champions, if you may. They said, no, we're attacking champions once again. A margin of 147 runs. India win by 147 runs to clinch gold here in the grand finale.
2: फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रन बनाए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 गेंद पर

0: 41 रन बनाए। शेफाली के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दूसरे विकेट के लिए स्मृति के साथ 42 रन की साझेदारी की। कप्तान ने 19 रन बनाए। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने स्मृति के साथ पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने 45 गेंद पर 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली। ऋचा ने भी 3 छक्के और 6 चौके की मदद से नाबाद 49 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 216 रन बनाए। 217 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन की पारी खेली। काविशा दिलहारी ने 11 और कौसिनी ने 14 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छू भी नहीं सकी। दीप्ति शर्मा ने 1.5 की इकोनॉमी रेट से एक मेडन ओवर के साथ महज 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैम्प।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि स्मृति मानधना ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। फाइनल में उन्होंने 45 गेंद पर 79 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
2: वाह, क्या बात है। प्रशांत, एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष पहला स्वर्ण पदक जीता है और इस मुकाबले के दौरान क्या कुछ कीर्तिमान भी भारत ने बनाए?
1: बिल्कुल विनीता, टीम ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। ये रनों के लिहाज से टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
2: क्या?
1: इससे पहले भारत ने मलेशिया को एशिया कप 2018 में 142 रनों से हराया था। और विनीता, श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि फाइनल में मिली हार के बावजूद श्रीलंका ने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि फाइनलिस्ट थे वो भी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए वो फाइनल में थी, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला है। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
2: क्या बात है। प्रशांत, आज पुरुषों का भी मुकाबला खेला गया, तो कैसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन?
1: विनीता, अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये फ्रेंडली मुकाबला था। पुरुष को भी एशियन गेम्स खेलना है, 28 अक्टूबर से मुकाबला होना है सितंबर से तो। लेकिन 5 ओवर का गेम हो सका विनीता, 20 ओवर का गेम होना था लेकिन बारिश के कारण 5-5 ओवर ही खेल हो सका। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 4 विकेट पर 32 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। 33 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम 30 रन ही बना सकी और 2 रन से रोमांचक मुकाबला हार गई। विनीता, मैं आपको यह भी बताऊं कि भारतीय पुरुष टीम 28 तारीख को पहला मुकाबला खेलेगी और महिला टीम की तरह ही भारतीय प्रशंसकों को पुरुष टीम से भी स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन भी है भारत का, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है, जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाज, शिवम दुबे है, तो उम्मीद की जाए कि भारतीय टीम जो है वो पदक का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा।
2: बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें स्वर्ण पदक बस मिल ही जाए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी प्रसन्नता व्यक्त करती हुए एक कुछ हमारे लिए भेजा है। ये सराहना जो खिलाड़ियों के लिए की है उन्होंने, तो हम इसको सुने।
3: I am so happy that cricket is one gold and I was there in the coordination committee of organized in the Japan Asian Games coordination committee. So I only requested them to add the cricket this time, men and women. So they accepted and so I just want to see the players are winning gold medals. So I'm so happy that we have won the gold.
1: और अब चलते हैं एशियन गेम्स के वुशु गेम्स की ओर। भारत की रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रोशिबीना ने एशियन गेम्स में अपना तीसरा मेडल सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: 18 और 2022 एशियन गेम्स की मेडलिस्ट रोशिबीना ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा कॉन्टिनेंटल मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने पॉइंट्स के अंतर से मैच 5-0 से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। रोशिबीना ने इससे पहले सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। मौजूदा एशियन गेम्स में वुशु में भारत का ये पहला पक्का मेडल है। रोशिबीना एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, जब वो सांडा 60 किलोग्राम कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने 2018 जकार्ता खेलों में भी इसी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा भारत के आर्यन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जो अब मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान के साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।

0: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। आइए एक रिपोर्ट सुनते हैं।
1: He's done it. Ayush Shetty has done what Lakshya Sen did, what Sai Ranki Reddy and Chirag Shetty did. He's taken India to Asian Games 2026 semi-final. That's his first outing in Asian Games. And boy, he's delighted with the coaches. Pulela Gopichand is ecstatic inside for sure, and so is Ivansya, the Indonesian coach.
2: भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही प्रतियोगिता में अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। लक्ष्य सेन ने शुरुआती सिंगल्स मैच में कोडाई नारोका की कड़ी चुनौती का सामना किया। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने जीत दर्ज करते हुए भारत को सेमीफाइनल के करीब पहुंचा दिया। वहीं अंत में आयुष शेट्टी ने कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। पहला गेम 11-21 से हारने के बाद लक्ष्य को काफी संघर्ष करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-5 से जीत कर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचाया। तीसरे गेम में नारोका ने फिर से बढ़त बनाई और 5 अंकों की बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने शानदार वापसी की। उन्होंने स्कोर 19-19 से बराबर किया और फिर अगले 2 अंक जीत कर 11-21, 21-5, 21-19 से जीत हासिल की। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को पहले गेम में 21-18 से हराया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। जापान ने 3 मैच पॉइंट बचाए और स्कोर 20-20 कर दिया। सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और आखिरकार 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। वहीं अंतिम मुकाबले में आयुष शेट्टी ने वातानाबे को पहले गेम में 21-10 से हराया। आयुष ने दूसरे गेम में भी निरंतरता बनाए रखते हुए मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: बैडमिंटन में भी अगर हम बात करें श्रोताओं, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। आयुष शेट्टी की बात कर लें, सिंगल्स कई सिंगल्स खिताब जीते उन्होंने, लक्ष्य सेन ने कई खिताब जीते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर 5वीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट कोई भी हो, भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों को उनसे पदक की उम्मीदें होती हैं। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय टीम को जापान से आज 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
0: क्या बात है, अब बैडमिंटन की बातें हो गई तो बातें मुक्केबाजी की हो जाए। एशियन गेम्स मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी ने आज शुरुआती राउंड में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता आयरा विलेगास को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट नेहा से।
4: साक्षी ने निशियो जिम्नाशियम में अपने एशियन गेम्स में डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फिलिपिनो बॉक्सर को 5-0 से हराया। उन्होंने 10-9 के स्कोर के साथ तीनों राउंड जीते। साक्षी के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। बृहस्पतिवार को उनका मुकाबला मौजूदा 51 किलोग्राम वर्ल्ड चैंपियन अलुआ बल्की बेकोवा से होगा। वहीं भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी। इसी के साथ जादूमणि ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सिल्वर मेडलिस्ट ने यह बाउट निशियो जिम्नाशियम में जीती। जादूमणि ने शानदार मुकाबला करते हुए थापा पर 5-0 से जीत हासिल की। जादूमणि ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के खिलाफ धीमी शुरुआत की, लेकिन मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और तीनों राउंड में सटीकपन से जजों को प्रभावित किया। शुरुआती 2 राउंड जीतने के बाद जादूमणि ने अपना दबदबा बनाए रखा और तीसरे राउंड में एक लेफ्ट हुक लगाया, जिससे थापा को स्टैंडिंग काउंट का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉक्सर ने तीसरा राउंड भी जीता और मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जादूमणि अब शनिवार को प्री क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के बॉक्सर कार्लो पालाम से भिड़ेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
3: साक्षी चौधरी हो, जादूमणि सिंह हो, इन्होंने कॉमनवेल्थ में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत को कई पदक दिलाए थे, और एशियन गेम्स में भारत को इन मुक्केबाजों से पदक की उम्मीदें होंगी। और अब चलते हैं टेबल टेनिस की ओर। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो भारत की महिला टीम ने आज थाईलैंड को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने 2-1 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए थाईलैंड को 3-2 से

0: हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नॉर्थ कोरिया से होगा। यशस्विनी घोड़पड़े ने 2 जीत के साथ भारत को मुकाबले में बनाए रखा, जबकि श्रीजा अकुला ने ओलंपियन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट सुथासिनी साइबेतकवर 3-1 से जीत हासिल करके मुकाबला पक्का कर दिया। भारत ने अब तक एशियन गेम्स टेबल टेनिस में 3 कांस्य पदक जीते हैं। ये सफलता जकार्ता 2018 में मिली थी, जहां भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स में देश के लिए पहला टेबल टेनिस मेडल जीता था। इसके बाद शरत कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स डबल्स में 1 और कांस्य पदक जीता। हांगझोउ 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स में कांस्य पदक जीता, तो टेबल टेनिस से भी भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमने टेबल टेनिस की बातें की तो कबड्डी कैसे पीछे रह सकता है। तो कबड्डी की बात करें तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने प्रतियोगिता के अपने दूसरे मैच में पता है साउथ कोरिया को 63-31 से शिकस्त दे दी है।
0: जी, जी।
1: और सुनील कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा है और साउथ कोरिया को वापसी करने का तो कोई मौका ही नहीं दिया। और प्रशांत, और क्या बोलते हो कि भारतीय जो यूनिट है पूरे मैच में कैसा
0: बेहतरीन प्रदर्शन किया है,
1: है ना?
0: बात अगर हम करें तो कोरिया के 23 पॉइंट के मुकाबले उन्होंने 38 पॉइंट हासिल कर लिया, जबकि डिफेंस ने कई सफल टैकल के साथ रेडर्स का भरपूर साथ निभाया। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम भी रही है विनीता।
1: जी जी बिल्कुल,
0: अब तक हुए 13 टूर्नामेंट्स में से 11 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है।
1: बिल्कुल, ये गेम ही ऐसा है कबड्डी, बिल्कुल स्पीड वाला पूरे ओर से खेला जाता है और हमारे टीम पुरुष टीम ने 9 में से 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। और सिर्फ जकार्ता में ही नहीं, 2018 की बात करें, उन्हें वैसे तो वहां पर हार का सामना जरूर करना पड़ा था लेकिन कांस्य पदक मिला था। और महिला टीम ने तो 4 में से पता है कितनी बार स्वर्ण पदक लिया?
0: जी,
1: 3 बार स्वर्ण पदक लिया।
0: और
1: 2018 में उन्होंने रजत पदक से ही काम चलाया। वैसे हमारी उम्मीदें तो हमेशा रहती है कि हमें स्वर्ण पदक ही मिले।
0: बिल्कुल, और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विनीता को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में

0: भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
0: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है, आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र

0: स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार अपने थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जैम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जैम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्री

0: यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medal tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के